0: This is ShopNomRadio.com. ShopNomRadio.com.
1: बाद में ना कहना कुछ भी पहले ही दे दूं।